0: மீடியா கபலி 96 எட்டில் ஹிந்தி பாடல்கள்.
1: You're listening to Hindi numbers on only 96.8.
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: माइसेल्फ पिंटू,
1: रैम्बो का नाम सुना, टर्मिनेटर का, और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के लिपस्टिक निकलता है ना,